0: लेखियोस्।
1: दुध पुर्याउन
0: ल ल जा।
1: सुन त, दिल्लीबाट गोविन्दले आएको रे नि।
0: सुन त,
2: यो दुध म पुर्याउँछु, त घर जा ल।
0: ल ल जा।
1: के मान्छे हो